0: आवाज ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
2: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शायरा नियोजोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीजोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है, दुशंबे में ताजिकिस्तान कोरिया सांस्कृतिक महोत्सव 2024 आयोजित होगा। बदखशान स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र की ऊर्जा प्रणाली विकास योजना प्रस्तुत की गई है। बेलारूस के ग्रोदनो शहर में ताजिक सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुत की गई और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में बदखशान स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र गुबाओं की ऊर्जा प्रणाली विकास योजना पोवेर सिस्टम फ्लिंट पीस 2025-2015 का अधिकारिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया। ये योजना ताजिकिस्तान की ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हाइड्रो पोवेर सस्टेनेबिलिटी एलिनेस के सहयोग से तैयार की गई है। प्रस्तुतिकरण समारोह में संबंधित मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि, पामीर एनर्जी के नेतृत्व विकास साझेदारी तथा ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ ने भाग लिया। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के उपमंत्री मनुचेर सफरजोदा ने कहा कि ये योजना केवल एक तकनीकी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए देश के दीर्घकालीन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समारोह में बताया गया कि ये दस्तावेज ताजिकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए चलाए गए 3 वर्षीय व्यापक कार्यक्रम के सफल पूर्णता को दर्शाते हैं। सत्रह 18 जून 2024 को दुशंबे में ताजिकिस्तान कोरिया सांस्कृतिक महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य ताजिकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना, दोनों देशों के कला और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान करना है। महोत्सव के दौरान ताजिक दर्शकों को कोरिया के सांस्कृतिक परियोजना और सांस्कृतिक उपलब्धियों को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि ताजिकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक संबंध 27 अप्रैल 1997 को स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया है। बेलारूस के ग्रोदनो शहर में 27 राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के ताजिक लोगों के सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बेलारूस में ताजिकिस्तान के राजदूत बख्तोवर सफरजोदा ने भाग लिया। महोत्सव का विशेष भाग में ताजिक राष्ट्रीय पोशाक, लोक कला, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभागियों को ताजिक सांस्कृतिक और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिला। یہ مہوتسو بہنن دیشوں کے بیچ میں چرتا اور آپ سے سماج کو مضبوط کرنے میں سہایک ثابت ہوا۔ آتا جون کو پیپر لیس ویاپارا سپتا کی تحت سنیوگ راشتر کے مدیہ شئی کی ریوستا کے لیے ویشیش کراکرام کے ویاپارا سمبند ہے کریا سمو کی بیسمنگ بیٹھا گئی اوجید کی گئے۔ اس سمبند میں تاجکستان کی آرتھک وکاس اور ویاپار منترالائی کے حوالے سے سوشنی جنسی خوار نے جانکاری دی۔ تاجکی پارتیک وکاس ایون ویاپار منتری علی دین نصر الدین زودا نے کہا کہ تاجکستان کی راشٹرپتی مالی رحمون اور سپیکا سداسیہ دیشوں کے نیتاؤں کے دوردرشی نیتی کے کارن ویاپاریک سمپرکوں کو مضبوط کرنے ترانس کے سی پیانا پریواہن گلیروں میں دیتا کہ ڈیجیٹلی کارن یوروشا میں استائی پریواہن سمپرکوں میں سودھار ارجا کنیکٹیویٹی سٹاج ویاپار نواچار اور سروکراس اریا وستا کے وکاس جیسے کھیتر میں سہیوگ تیزی کے آگے بڑھ رہا ہے۔ بیٹھک میں سپیکا سدسیہ دیشوں تاجکستان آذربائیجان قزاقستان کرگزستان ترکمنستان اور ازبکستان کے پرتنیدھیوں نے 2025-2026 کے کاریا یوجنا کے کریانویان اور ویاپار کھیتر میں پراپد مہتو پور پلب دیو پر جانکاری پرستت کے۔ اس کے علاوہ سنیوگت راشٹر ایشیائی اور پرشانت آرتھک ایون سماجک آیوگ کے پرتنیدھیوں نے ڈیجیٹلی کارن اور ڈیجیٹل ویاپار کے وکاس سے سمبندھت ہت مدعوں پر چرچا کے، جبکہ سنیوگت راشٹر یورو آرتھک آیوگ نے ویاپار وکاس کے لیے آیوجت گتیویدھیوں اور ٹھوس اپایوں کے کریانویان پر اپنے وچار پرستت کیے۔ انیہ وکاس سجیداروں نے بھی سکریہ بھاگ دریک ہے۔ پیاری سنی والوں یہ تھا سائے سماچار، ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: ताजिकिस्तान और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर, ताज़ा और विश्वसनीय खबरें आधिकारिक सूत्र से रेडियो आवाज़ ताजिकी हिंदी विभाग से 105.5 FM में सुन सकते हैं।
2: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। आपके साथ है शोएरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अज़ीज़ोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है। दुशंबे में ताजिकिस्तान कोरिया सांस्कृतिक महोत्सव 2024 आयोजित होगा। बदखशान स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र की ऊर्जा प्रणाली विकास योजना प्रस्तुत की गई। बेलारूस के ग्रोदनो शहर में ताजिक सांस्कृतिक विरासत प्रस्तुत की गई और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे में बदखशान स्वायत्त पर्वतीय क्षेत्र गबाओ की ऊर्जा प्रणाली विकास योजना पोवेर सिस्टम फ्लिंट पीस 2025-2015 का अधिकारिक रूप से प्रस्तुतिकरण किया गया। ये योजना ताजिकिस्तान के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा हाइड्रोपोवेर सिस्टम बिल्ट एलिनेस के सहयोग से तैयार की गई है। प्रस्तुतिकरण समारोह में संबंधित मंत्रालयों और सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि, पामीर एनर्जी के नेतृत्व विकास साझेदारी तथा ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री के उपमंत्री मनुचेर सफरजोदा ने कहा कि यह योजना केवल एक तकनीकी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए देश के दीर्घकालीन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समारोह में बताया गया कि ये दस्तावेज ताजिकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता विकास के लिए चलाए गए 3 वर्षीय व्यापक कार्यक्रम के सफल पूर्णता को दर्शाते हैं। सत्रह-18 जून 2024 को दुशंबे में ताजिकिस्तान कोरिया सांस्कृतिक महोत्सव 2024 आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य ताजिकिस्तान और साउथ कोरिया के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना, दोनों देशों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में अनुभवों का आदान प्रदान करना है। महोत्सव के दौरान ताजिक दर्शकों को कोरिया के सांस्कृतिक परियोजना और सांस्कृतिक उपलब्धियों को निकट से जानने का अवसर मिलेगा। उल्लेखनीय है कि ताजिकिस्तान और दक्षिण कोरिया के बीच राजनीतिक संबंध 27 अप्रैल 1997 को स्थापित हुए थे। तब से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत होता गया है। बेलारूस के ग्रोदनो शहर में 27 राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव के ताजिक लोगों के सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बेलारूस में ताजिकिस्तान के राजदूत बख्तोवर सफरजोदा ने भाग लिया। महोत्सव का विशेष भाग में ताजिक राष्ट्रीय पोशाक, लोक कला, गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। प्रतिभागियों को ताजिक सांस्कृतिक और परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिला। یہ مہوتسو وبھن دیشوں کے بیچ مچرتا اور آپ سے سماج کو مضبوط کرنے میں سہایک ثابت ہوا۔ آتھ جون کو پیپرلیس ویاپار سپتاہ کے تحت سنیکت راشٹر کے مدیشی کے ریاست کے لیے وشیش کارکرم کے ویاپار سمبندھی کاریہ سمو کی 20ویں بیٹھک آیوجت کی گئی۔ اس سمبندھ میں تاجکستان کے آرتھک وکاس اور ویاپار منترالیہ کے حوالے سے سوچنے جنسی خوار نے جانکاری دی۔ تاجک آرتھک وکاس ایون ویاپار منتری علی دین نصر الدین زودہ نے کہا کہ تاجکستان کے راشٹرپتی مالی رحمان اور سپیکا سداسیہ دیشوں کے نیتاؤں کے دوردرشی نیتی کے کارن ویاپاریک سمپرکوں کو مضبوط کرنے ترانس کے سی پیان پریواہن گلیروں میں دیتا کہ ڈیجیٹلی کارن یوروشا میں استائی پریواہن سمپرکوں میں سودھار ارجا کنیکٹیویٹی سٹاج ویاپار نواچار اور سروکراس اریاوستہ کے وکاس جیسے کھیتر میں سہیوگ تیزی کے آگے بڑھ رہا ہے۔ بیٹھک میں سپیکر سداسیہ دیشوں تاجکستان آذربائیجان قزاقستان کرگزستان ترکمنستان اور ازبکستان کے پرتنیدھیوں نے 2025 2024 کے کاریہ یوجنا کے کریانویان اور ویاپار کھیتر میں پراپت مہتوپورن اپلبدھیوں پر جانکاری پرستت کی۔ اس کے علاوہ سنیکت راشٹر ایشیائی اور پرشانت آرتھک ایون سماجک آیوگ کے پرتنیدھیوں نے ڈیجیٹلی کارن اور ڈیجیٹل ویاپار کے وکاس سے سمبندھی ہت مدعوں پر چرچا کی، جبکہ سنیکت راشٹر یوروپ آرتھک آیوگ نے ویاپار وکاس کے لیے آیوجت گتیویدھیوں اور توسو اپایوں کے کارنویان پر اپنے وچار پرستت کیے۔ انیا وکاس سجیداروں نے بھی سکریہ بھاگ دری کی۔ پیاری سنی والوں، یہ تھا سائے سماچار۔ ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیے۔

बुना हुआ दस्ताने बुना हुआ मोजे भी जिम्नास्टिक के लिए उपयोग किया जाता है। मुनाई ताजिक परंपराओं में से एक है और ये मध्य एशिया के ताजिक रहने वाले के बीच प्राचीन काल से लोकप्रिय है। उदाहरण के लिए बुखारा, समरकंद, खुजान, इस्तराशान, हिसार, बदखशान और अन्य ताजिक नगरों में शिल्प के विशेष स्थान मौजूद था। हाथ बुनाई लोक कला में से एक था जो रुबाफी बदखशान लोगों के पारंपरिक कारीगरों में से एक है जो उन उत्पादों के विकास में शामिल है। ये शिल्प इस क्षेत्र के इलाकों में अधिक विकसित होते ही उनके उत्पाद अपेक्षाकृत बेहतर, अधिक मनोरंजक और सुंदर है। बदखशान प्रांत के महलों जुरा बुनाई में मास्टर बन गए हैं और वे विभिन्न नक्शे से बांधती है। इस क्षेत्र के जुराब न सिर्फ हमारे देश में बल्कि उसके बाहर विदेश में भी बहुत प्रसिद्ध है और आपने नक्शो निगार से सैकड़ों पर्यटकों के दिल में जगह पैदा किया है। प्राचीन काल से पहाड़ी रहने वाले ताजिकों, खास तौर पर पामीर निवासी लोग शादियों और त्योहारों अजीज मेहमानों को तोहफा करते हैं जो ये परंपरा आज भी चल रही है। बदख्शी निवासियों के जुराब ताजिकिस्तान के दूसरे नागरों के जुराब से बिल्कुल फर्क है। बदख्शी जुराब दूसरे जुराबों की तुलना थोड़ा से लंबा है। यदि आप सुई बुनाई पर बुनाई के विज्ञान के समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये आवश्यक है कि मुख्य प्रकार के लोगों से परिचित हों, उनके पहचाने और उन्हें टाई जाने के लिए सीखें। बुनाई की मूल बातें अभार काबू आने के बाद आप चितरंग के निष्पादन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआती बुनाई सुई सीखने के लिए प्रकाश पेंटर लेने के लिए सबसे अच्छा है। बुनाई के लिए सरल बुनाई पेंटर की राय उबायु वाला उनमें से सुंदर चित्रों का एक बहुत कुछ है। सबसे लोकप्रिय के साथ और इस आलेख में आपको परिचय उनमें से प्रत्येक के लिए प्रशिक्षण की स्पष्टता और सादगी के लिए हम एक बांध की योजना प्रदान करेंगे। कोनवास में छेद की उपस्थिति के कारण ऐसे चित्रों को घर के भीतर या गर्म मौसम में भरने के उद्देश्य से उपायों के लिए अनुशंसा की जाती है। ये निर्वधा ब्लाउज, सरफान कपड़े, हल्के टोपी और ताजिक राष्ट्रीय अतलस कपड़े हो सकते हैं। ये पहली बार एक पेड़ पर टाई करने के लिए सिफारिश की हेमुना है। 16-20 छोरों टाई करके जब आप काम करते हैं, तो आप इसके साथ एक संपूर्ण उत्पाद को बुना शुरू कर सकते हैं। शुरुआती के लिए बुनाई के पेड़ को धीरे धीरे जटिल बनाना मुश्किल है। एक नए के लिए जाओ केवल जब आप पहली बार बुना करने के लिए सीखा है। प्यारे सुनने वालों, ये थे हमारे तिपानी ताजिक लोक शिल्प बुनाई के बारे में। हमारे दूसरे प्रसारण जारी रहा है, हमारे रेडियो के साथ रहे।